Tunog. Suntehan number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

अरिजीत सिंह, खुशबू और रोज कला की आवाज में गर्ल आई नीड यू फ्रॉम द मूवी बागी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। मंडे का दिन है अगस्त 24, यही उम्मीद है कि बहुत अमेजिंग जाएगा, पर कल का दिन कैसे गया ये भी तो आपसे जानना है। देखो मैं तो सुबह 10 बजे चली जाती हूँ, उसके बाद का आपके दिन का जो फुल रिपोर्ट है वो तो मुझे चाहिए होता है ना, बिकॉज आई केयर, आई वॉन्ट यू टू हैव एन अमेजिंग डे एंड आई होप यू डिड। डू लेट मी नो 3311 1063 पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस कर दो, साथ में बता दो क्या था, क्या किया कल, मैं भी बता दूंगी। देखो ऐसे ही तो रिश्ता आगे बढ़ेगा ना, सिर्फ मैं ही बताती रहूंगी और आप सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो कैसे चलेगा, मुझे भी तो सुननी है आपकी बातें।

बहुत ही खूबसूरत गाना है यार, एंड आई somehow like द मूवी एज वेल. देखिए क्या आपने ब्यूटिफुल ट्रैक. द लोकल ट्रेन से हर जाद में जावेद बशीर साहब भी इंतजार.

मुसाफिर कैफे से ये खूबसूरत गाना और साथ में रॉकस्टार से दिस वन एज वेल. अब हुई ना कोई बात, अब मनी बात मॉर्निंग में, राइट? तो पहले मैसेजेस शुरू कर दीजिए, फिर मैं कुछ देर में गाना भी भेज दूंगी आपके लिए. 3311063 is the number. Those who have, you know, already are on the way to work, जो drive कर रहे हैं वो तो सिर्फ सुने मुझे जब आप अपनी destination पे पहुंच जाए या फिर you know किसी light पर रुके तो मुझे उठाकर message कर देना. Drive करते हुए phone बिल्कुल use नहीं करना है. जो passenger princess और प्रिंस बन के बैठे हैं, यू कैन मैसेज मी राइट अवे 3311063 पर. और जो अभी रेडी हो रहे हैं काम के लिए, अगर थोड़ा वक्त निकाल पाए तो मुझे अच्छा लगेगा मेरी जान. फिलहाल भेज रही हूँ बंजारे का बरसात. स्टे ट्यून्ड एंड जुबिन दास.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर.

ये सैड बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, और एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी, जरा गौर से सुनिए और पूरा दिन लागू करनी है आपने, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है इसे। सो इनर पीस के झरने बहेंगे, इनर पीस के झरने बहेंगे व्हेन यू स्टॉप केयरिंग अबाउट चार लोग क्या कहेंगे। हमारे दिन भर में कितने सारे डिसीजंस हम इस बेसिस पे लेते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, यू नो दे विल जज अस, उन्हें बुरा लगेगा, कोई ऑफेंड हो जाएगा। नहीं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्रॉब्लम माई लव, क्योंकि यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे इंटेंशनली, और ट्राई अनइंटेंशनली भी ना ही हो, बट वट एवर फील्स गुड टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो किसी और की वजह से नहीं करना is not fair to yourself. So, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, whatever you want to do in your life, you have to do it. आपको वो पिक्चर पोस्ट करनी है पर आपको लग रहा है कि अरे my friends will make fun of me, ठीक है करने दो, आप पोस्ट करो, ठीक है। So, do whatever you want, stop caring about people, because आपने नहीं adjust करना, the world will adjust according to you.

0: Delisha. Delisha.
1: आर से नाचो नाचो ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो गया है तो आज का जो सवाल है वो ये है कि चांदनी नाम की लड़की को डराओगे तो क्या होगा. चांदनी नाम की एक लड़की है, अब उसे डरा दिया गया तो क्या होगा. इसका जवाब मुझे हिंट देनी पड़ेगी. आई फील दिल्ली में एक जगह है वो होगा. सोचो जरा चांदनी नाम की लड़की को डराया जाए तो क्या होगा. अब तो बहुत आसान हो गया है जी, अब तो आ ही जाएगा. 3311063 पर मैसेज कीजिए मुझे या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. चांदनी नाम की लड़की को डराया जाए तो क्या होगा. सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the heart of every

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. ए आर रहमान और सना की आवाज में तू है मोहिंद्र तारे मूवी से बहुत खूबसूरत गाना है यार. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. Denisha आपके सैड बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. तो लेम जाम्स का आज का मेरा सवाल था कि अगर चांदनी नाम की लड़की को डराया जाए तो क्या होगा. एंड आई हैव गॉट द आंसर्स ओवर हियर. हिंट भी दिया था कि दिल्ली में एक जगह है वो होगा. जी हाँ. सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी का, मुसरत जी का, देन शेख का मैसेज आया है, मोहम्मद, देर इज आदिल, विजय एंड देर आर फ्यू पीपल अगेन. उनके नाम पे सिर्फ इमोजीज है तो नहीं पता मुझे कि कौन है. एक ने डॉल्फिन इमोजी बनाया हुआ है. या सो वी हैव गॉट अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर एंड सब करेक्ट है. यस द करेक्ट आंसर इज चांदनी चौक जाएगी. टू स्टेट से गाना आ रहा है लेकिन उसके पहले ये भी आएगा. Absolutely love this track.

बट ख्याल रखिएगा, ड्राइव सेफली. ऑल्सो जस्ट अ रिमाइंडर, बैक टू स्कूल सीजन आ चुका है, जल्दी स्कूल्स खुल जाएंगे, तो अभी रोज जो खाली मिल रहे हैं इंजॉय कर लो, क्योंकि ज्यादा वक्त तक तो नहीं मिलने वाले ये मेरी जान. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो 101.5.

0: zice, bau vrea să mână, bau vrea să mână.
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
2: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
5: This is
6: Vani
5: Bhanushali.
7: Hey, this is
6: Ileana
7: De Cruz.
8: This is me, Ritik Roshan.
9: Hi, I'm Alia
10: Bhatt. Hi, I'm Vivek Anand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Geo Bindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: Benny के आवाज में टू स्टेट से लो चाय अल्फा द लियोन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. धीरे धीरे लाइक करने लग जाएंगे, चीजें ठीक होती नजर आ रही हैं जी. राइट नाउ दो द टेम्परेचर इज 34 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 43 डिग्रीज. ब्रेस योरसेल्फ मिशन. अभी भी यू नो चीजों का ख्याल रखें, बहुत सारा सनस्क्रीन लगा कर जाएं. इफ इट्स विंडी और आप एलर्जिक हैं तो मास्क वगैरह साथ रखें सो दैट ट्रिगर ना हो जाए एलर्जीज. बाकी मेट डिपार्टमेंट ने कल बता दिया है कि भाई ये जो सुहेल स्टार है, सुहेल स्टार वो आज से राइज हो गया है. एंड आज से लेकर लाइक 24 अगस्त से लेकर 53 डेज तक का जो पीरियड है, अब इसमें ग्रेजुअली जो हीट है वो कम होती जाएगी. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सीजन. बहुत प्लेजेंट, बहुत ब्यूटिफुल होता है यार कतर में विंटर, जितना भी होता है. आई एब्सोल्युटली लव इट. सो यस, द गुड डेज आर कमिंग मेरी जान. बस थोड़ा सा और इंतजार है, निकल जाएंगे यार. आप हैं, हम हैं, कमाल के गाने हैं और क्या, स्ट्रेस ले लेने का. ठीक है, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: डिलीशिया
1: चॉकलेट मूवी से सर रेगम की आवाज में हल्का हल्का सा ये नशा, बहुत कमाल गाना और काफी टाइम के बाद सुना मैंने, तो मैं तो क्या मस्त वाइब कर रही थी यार इधर स्टूडियो में। आई होप यू आर आल्सो एंजॉयिंग मेरी जान। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। एंड कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस की है इवनिंग क्लासेस इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर कतरी स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, एंड दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन टू यू नो मेक एजुकेशन मोर अफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल फॉर एवरीबॉडी। सो ये जो इवनिंग क्लासेस हैं, इट हैज कैपेसिटी फॉर मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड जो एनुअल फी है पर स्टूडेंट दैट इज 3000 रियाल। एंड 46 प्राइवेट स्कूल्स एंड किंडरगार्टन्स जो हैं उन्होंने उनके साथ ये एक्सपेंशन किया गया है एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और साथ में देर इज अ वाइडर इनिशिएटिव जिसमें यू नो फ्री डिस्काउंटेड या फिर एजुकेशनल वाउचर सीट्स भी मिल रही हैं। सो चेक इट आउट इफ एनी ऑफ यू वांट्स टू अवेल दिस। और बाकी बढ़िया है, बैक टू स्कूल की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं कतर में सब जगह और हमने भी

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव

0: रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और भाई जितने भी लोग बैक टू स्कूल के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन किधर कराना है, रजिस्ट्रेशन आर फाइनली क्लोज मेरी जान. जी हाँ, खत्म हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन. जिन्होंने भी रजिस्टर किया है आपको कन्फर्मेशन का कॉल जल्दी आता ही होगा क्योंकि कुछ ही दिन रह गए. 27th को हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में फॉर बैक टू स्कूल बैच, जहाँ पर बहुत सारा फन होगा, बहुत सारी इंगेजिंग एक्टिविटीज प्लान है आपके लिए. एंड इट्स गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई एम सुपर एक्साइटेड. 3 to 7 PM. एंड अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो वी आर रियली सॉरी, मे बी नेक्स्ट टाइम. लेकिन जिन्होंने रजिस्टर किया है आपको कन्फर्मेशन का कॉल आएगा. एंड डू नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज पीपल कीप आस्किंग हियर कि अभी तक कॉल नहीं आया, अभी तक कॉल नहीं आया. रजिस्ट्रेशन कल ही क्लोज हुए हैं तो कॉल भी आपको जल्दी आता होगा मेरी जान. थोड़ा सा सब्र रखने का, ठीक है.
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
4: ਸਸਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.

0: बिलाल सईद की आवाज में तेरी खैर मांगदी बार बार देखो मूवी से बहुत ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड स्कूल सीजन इज कमिंग बैक, स्कूल जल्दी ओपन होने वाले हैं, तो थोड़ी सी ना एआई की बात कर लेते हैं, वो किस तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है स्टडी में। सिर्फ आंसर्स एआई से मांग लेना इज नॉट गुड इनफ, हम उससे बहुत कुछ करवा सकते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए बहुत सही तरीके से यूज किया जा सकता है। यू नो इट कैन बी अ लर्निंग असिस्टेंट, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर टीचर और स्टूडेंट्स। अगर आपको लगे कि वो आपको सब सिखा देगा, नहीं, दैट्स नॉट गोना हैपन, इट विल अकंपनी यू व्हाइल यू आर लर्निंग थिंग्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स को एआई का इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए, रादर देन यू नो कॉपी कर रहे हैं आंसर, पेस्ट कर दिया, हो गया काम खत्म, नहीं। सो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई कर सकता है। जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही है, यू जस्ट आस्क एआई टू सिंप्लीफाई देम फॉर यू एंड देयर इट इज, आप आसानी से चीजें समझ जाएंगे। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स जनरेट आइडियाज, क्रिएट माइंड मैप्स, प्रिपेयर स्टडी मटीरियल्स, इन सब चीजों में आपने एआई से अपने लिए काम करवाना है। ओके, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड फीडबैक बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड लर्निंग लेवल। जिस तरह से भी आप चीज़ें समझ रहे हैं और जो भी डिफ़िकल्टी लेवल आप फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसे मोल्ड कर सकते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। टीचर्स कैन ऑल्सो यूज एआई लेसन प्लान क्रिएट करने के लिए, एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशंस, यू नो इट मेक्स थिंग्स वेरी एफिशिएंट एंड ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस। सो इस स्कूल सीजन एआई का इस्तेमाल अपने बच्चों को इस तरह से करवाइए कि वो उनकी स्टडीज में और भी ज्यादा हेल्प करे और उसे और एफिशिएंट बना दे, ना कि जस्ट वो कॉपी पेस्ट करके आंसर लिख के भेज दे, खत्म कर देगा। नो, दैट्स नॉट गुड इनफ, कोई फायदा ही नहीं है ना उससे, वहीं की वहीं रह गए, ग्रोथ तो हुई नहीं। सो दिस स्कूल सीजन एआई को बेहतर तरीके से लर्न करने के लिए यूज करें, ना कि लर्निंग को अवॉइड करने के लिए यूज करें, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, एंड्रियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
2: कूल सॉन्ग। Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance.
3: Oh yeah.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਵੁਮਨ ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੇਡੀਓ 11.6.3 ਐਫਐਮ ਦਨੀਸ਼ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬਿੰਦਾਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ
1: ਯੇ ਹੈ ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
0: तो आज का जो वर्ड है वो जापानीज डिक्शनरी से लेकर आई हूँ मैं एंड इट इज योकोमेशी YOKOMESHI योकोमेशी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है. इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि यू नो द एंग्जाइटी द ऑकवर्डनेस यू फील जब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हो से यहाँ पे व्हेन आई इंटरैक्ट विद पीपल हु स्पीक मलयालम मुझे नहीं आती है ना मुझे ढंग से समझ में आती है. बहुत ऐसे एक दो वर्ड्स पता चल चुके हैं लोगों से यहाँ पे बात करते करते एंड आई ट्राई टू यू नो कंस्ट्रक्ट अगर सेंटेंसेस विद दैट ओ माय गॉड क्रेजी ऑकवर्ड एंड देन पीपल हु डोंट नो इंग्लिश दैट वेल इतना हैबिचुअल नहीं है उसमें बात करने में दे अंडरस्टैंड इट रियली वेल पर क्योंकि बात करने की आदत नहीं है और जब उसमें बात करनी पड़ती है तो एक वो जो ऑकवर्डनेस जो एंग्जाइटी हो जाती है ना दैट इज योकोमेशी. यस वी ऑल फील दैट समवेयर डाउन द लाइन राइट. कभी ना कभी हम सब ने ये महसूस किया है वी ऑल हैव गॉन थ्रू योकोमेशी सो इट इज एब्सोल्युटली ओके. वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. कोई ऑकवर्डनेस की जरूरत नहीं है. हम एवरीडे कुछ सीख रहे हैं ना तो अगर आज कुछ नया सीखा है एक नया वर्ड सीखा है ओके ऐड कर लो. उसमें वियर्ड फील करने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे तो ये नहीं आता है. कोई बात नहीं सबको सब कुछ नहीं आता है ठीक है. चिल करो जरा बढ़िया गाना भेजो वो एंजॉय करो. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: हर सुबह 6 से 10 हर जिस्ता निशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha.
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में और एल्बम से माया ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके सैड बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. वैकी विजडम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूँ आज में. सो जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, लाइक ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं और यू नो वट एवर काइंड ऑफ शॉपिंग वी आर गोइंग टू डू, वहाँ पे शॉपिंग कार्ट्स होते हैं. कभी सोचा है कि वो इन्वेंट कैसे हुए थे? किसने सोचा कि हमें इसकी ज़रूरत हो सकती है? वेल, 1937 में सिल्वन गोल्डमैन करके एक सुपरमार्केट ओनर थे यूएसए में. एंड उनका सुपरमार्केट था, सो पीपल वुड कम टू बाय ग्रॉसरीज एंड स्टफ, लेकिन अपनी अपनी बास्केट सब लेकर आते थे, ठीक है. और जैसे ही वो बास्केट या तो फुल भर जाती थी या फिर बहुत हैवी हो गई कि अब वो होल्ड नहीं कर पा रहे, तो वो सीधा चेकआउट काउंटर में भागते थे कि चलो हो गया, इससे ज़्यादा तो मैं कैरी ही नहीं कर सकता या कर सकती, तो इट्स डन नाउ. नाउ सिल्विन थॉट कि यार ये तो गलत हो रहा है, अगर इन्हें और चीज़ें खरीदनी है पर जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट दे आर नॉट बाइंग, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना. सो इज लाइक इसका तो कुछ करना पड़ेगा. वॉट इफ मैं ये जो बास्केट्स हैं ये इतनी कन्वीनियंट बना दूँ लोगों के लिए कि उन्हें कोई दिक्कत ही ना हो, कितना भी सामान वो भर लें उसमें. सो ही केम अप विद दिस आइडिया. उन्होंने एक फोल्डिंग चेयर ली, उस चेयर के ऊपर उन्होंने बास्केट रखी सो दैट पीपल विल ड्रैग इट, तो कोई ऐसे हैवीनेस वगैरह फील नहीं होगा और कोई स्ट्रेस नहीं होगा. सो ही पुट दैट इन हिज सुपर मार्केट. लेकिन इट वॉज नॉट लाइक यू नो वेल बिल्ट, इट वॉज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट. सो लोग बहुत कॉन्शियस थे उसे यूज करने के लिए. नो बडी वॉज टचिंग इट इवन, एंड देवर लाइक वेमेन वर लाइक अरे ये तो स्टाइलिश ही नहीं है, इसको तो मैं नहीं यूज कर सकती. एंड मेन वर लाइक कि नहीं मैं तो उठा सकता हूँ ना हैवी चीज़ें, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस बास्केट की जो कि I can move with the wheels. No, I don't need that. So nobody was using it. So he was such a smart man, the Sylvan Goldman. What he did, he hired people. Yes, to use the basket in the supermarket. और जब लोगों ने देखा कि भाई ये wheels पे चलती हुई जो एक basket carrier है और इस पर basket रखी है, सामान कितना भी डाल लो आपको heavy नहीं लग रहा है, it is so convenient for you. बहुत सारे मॉडल्स सुपरमार्केट में घूम रहे हैं इसे लेकर. एंड दैट्स हाउ ही कन्विंस्ड पीपल टू यूज द कार्ट्स, ठीक है. एंड देन इवेंचुअली उसका जो प्रॉपर मॉडल बनाया गया एंड यू नो ऑल द शॉपिंग सेंटर्स और ग्रोसरी स्टोर्स, हाइपरमार्केट्स, एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग इट. एंड टुडे द शॉपिंग कार्ट्स वी हैव, इट इज बिकॉज सिल्वन गोल्डमैन. व्हाट अ जीनियस यू नो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इट वॉज, और साथ में कन्वीनियंट भी कर दी चीज़ें हमारे लिए. बढ़िया है ना, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई वाज लाइक भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. यस, ही वांटेड हिज सेल्स टू ग्रो एंड दैट इज व्हाई ही इन्वेंटेड शॉपिंग कार्ड्स. यस, तो दैट रिमाइंड्स मी शॉपिंग करने का मन कर रहा है अभी, देखते हैं वीकेंड पे, है ना. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ लॉर्ड करा दियो. कुछ देर में मुझे बैक टू स्कूल की बात करनी है आपसे, तो कहीं जाइएगा नहीं. जियो बिंदास.
0: Radio Olive Pa. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

पनवाड़ी फ्रॉम द मूवी. मूवी छोड़ो यार, एक्टर याद आ गया मुझे, रोहित सराफ. अब बस मैं उनका डांस ही इमेजिन कर रही हूँ. बहुत ही कमाल किया था यार. Y'all listening to Radio 11.6.3 FM, the Nisha app के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड आई केम अक्रॉस दिस जापानीज लेजेंड व्हिच सेज, वेदर इट्स अ मशीन, अ हाउस और अ रिलेशनशिप, मेंटेनेंस इज ऑलवेज चीपर देन रिपेयरिंग. व्हाट यू निगलेक्ट यू लूज. एंड ओ माई गॉड, That's struck a chord, right? कोई भी रिश्ता हो, कोई भी मशीन हो, या फिर घर हो, anything, you know, जहां पर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी चीजें डगमगा रही हैं, थोड़ा मेंटेनेंस करके चीजें सुधर सकती हैं, तो कर दो. एफर्ट्स जरूरी होते हैं, ठीक है. इट वॉट एवर इट इज, जो भी आपके लिए प्रेशियस है ना, उसमें एफर्ट्स डालने में कोई बुराई नहीं है. आप बस अपना ही फायदा कर रहे हो उसमें. जी हाँ, और साथ में ये भी है.

0: What a beautiful movie it was, your highway. अच्छा सल्लू भाई कुछ कह रहे हैं, जरा सुनना।
1: तुझे अक्सा भी जुगमा दूं, आज चलती क्या?
0: थोड़े वक्त के बाद जब वेदर ठीक हो जाएगा ना, फिर चलेंगे, ठीक है? Tracks are coming up your way in this hour. Sundariya Radio, Olive, Gio, Bindas, Meri Jaan.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: Tanisha. Tanisha.
1: सरगम की आवाज में सतरंगी रे ओनली ऑन रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से लोगों की जिंदगी में ऐसे इंट्रूसिव बन के किया जाए ये सारी जो भी कंपनीज हैं ना जो भी नए नए टेक और गैजेट्स लेकर आ रही हैं बस यही देख रही हैं क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि जो एयरपॉड्स हैं एप्पल एयरपॉड्स उनमें बिल्ट इन कैमरा आने वाला है यस उनसे पूछा गया इसका रीज़न कि क्या ज़रूरत है इसकी तो कहते हैं कि व्हेन यू विल वेयर दोज एयरपॉड्स तो सिरी कैन सी द सराउंडिंग और आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी तो सिरी कैन डू कैसे बाहर निकल के अगर मुझे घर साफ करना है तो करके देगी क्या लॉजिक है वो इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंट्रूसिव बना दिया है ना टेक्नोलॉजी को कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड स्विचिंग टू दोज कीपैड फोन्स जिसमें कुछ भी नहीं है पर दिस इज नॉट ओके आई डोंट थिंक दिस वुड वर्क बट लेट्स सी अगर ये एक्चुअली आता भी है या नहीं अभी तो उड़ती हुई खबरें ही आई हैं कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है एप्पल की तरफ से तो ऐसे मत बोलना कि तनिषा तुमने तो कहा था कि आएगा पर ये आया नहीं है नो इट्स नॉट ऑन मी ओके
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

0: Delisha.
1: Delisha. Absolutely crazy track, but fun hai yaar. You are listening to Radio Ole 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par. And back to school bash ke jo registrations chal rahe the, wo officially close ho gaye hain. जी हाँ, एंड अब 27th को हम मिलने वाले हैं अबू सिद्रा मॉल में. जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है कॉन्फर्मेशन का, अगर आपको ऐसे स्ट्रेस हो रहा है कि अरे यार कुछ बताया नहीं है, डोंट वरी, यू विल गेट अ कॉल सुपर सून. दैट्स व्हाई वी सेड कि यू नो अपने फोन्स अपने साथ रखिएगा सो दैट आप कॉल मिस ना कर दें. और आपने रजिस्टर किया है तो वेल एंड गुड, दैट इज ऑल्सो एज गुड एज द कन्फर्मेशन. फिर भी कोई ऐसे डिलेमा हो, कुछ भी ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा हो, 3311063 इज द नंबर बिंदास मैसेज करने का. कॉल भी कर सकते हो 4444106 पर. तो मिलते हैं 27th ऑफ अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में फॉर बैक टू स्कूल.
2: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
2: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

एम ए विर्क शाहिद माल्या की आवाज में मनमर्जिया मूवी से दरिया. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड व्हाट एन अमेजिंग मूवी. इफ यू हैवंट वॉच इट. अभिषेक बच्चन से प्यार हो जाएगा भाई साहब. बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और वक्त हो चुका है मेरी जानी को मेरी जान. यस, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. और आपने पूरा अपना दिन भर ना ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है जी. और साथ में स्ट्रेस लेना चीज़ों का, होता रहता है, इट्स ओके. वन डे एट अ टाइम लेके चलेंगे, सब बढ़िया रहेगा. वेदर धीरे धीरे अच्छा होता ही जा रहा है. मतलब ऐसे आज ही पता चला है, पर मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हो गई हूँ. आपको पता है ना मेरा, आई वॉज वेटिंग फॉर द विंटर. सो या ऑलरेडी ऐसे पॉजिटिविटी आ चुकी है मुझ में कि अरे सुहाना मौसम आने वाला है. एनीवे, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मौसम राइट नाउ. सो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, ईट लाइट फूड, ठीक है. और बहुत सारा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए. वैसे वट एवर द वेदर इज, सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो करना ही है. जी हाँ, वो मैंडेटरी है. बाकी इफ यू हैवंट फॉलोड अस येट तो जाइए radioolive.qa पर. सोशल मीडिया पे हमें हर जगह फॉलो कर लो, बिकॉज वी कीप पोस्टिंग थिंग्स फॉर यू. कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं वहाँ पे, एंड इफ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यू नो, अगर हमारे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यू नेवर नो मेरी जान, यू माइट विन समथिंग एक्साइटिंग. बाकी चलती हूँ, मिलते हैं कल सुबह. आप अपना ख्याल रखिएगा. आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

कुमार सानू जी की आवाज में ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफ है। और मैं हूँ आपकी कशिश, आप मानो या ना मानो। हाँ, हो सकता है कि अभी सर्दी हो रखी है, मुझे जुखाम हो रखा है, इस वजह से आपको मेरी आवाज थोड़ी अलग अलग लगी। फिर आप बोलो कि यार ये कशिश के नाम से कौन माइक पे बात कर रहा है, तो मैं बता दूं कि मैं ही हूँ आपकी कशिश और आपके लिए शो लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, आज मैं आ तो गई हूँ लेकिन आप लोगों के मोटिवेशन की काफी जरूरत पड़ने वाली है। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर मुझे मोटिवेट करने के लिए। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, गेट वेल सून, कुछ भी बोल दो और यार बस इतना सा कर दोगे ना तो मुझे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं आपसे एकदम खुल के बढ़िया तरीके से बात करूंगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊंगी मुझे जुखाम हुआ हुआ है। बाकी आज आपको मुझे जो है इसी आवाज़ के साथ झेलना पड़ेगा। कल जो है थोड़ी बेटर थी, आज थोड़ी वर्स हो गई है। अब कल तक होप करते हैं कि बढ़िया हो जाए। फिलहाल जो है आपको शो शुरू करते ही 90s के गाने तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक नया नवेला गाना जो है वो आपको सुनाने वाली हूँ मैं दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में। मतलब मेरी आवाज़ के बाद जो है एक अच्छी आवाज़ सुनना तो आप डिजर्व करते हो देखो। इसलिए मैं वापस आऊँगा से क्या कमाल है गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। वॉल्यूम बढ़ा के आप इन्जॉय कीजिए एंड मैंडेटरी चीज़ें देखिए करनी ज़रूरी है। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से नंबर अपने व्हाट्सएप पर डालिए। हाय हेलो गुड मॉर्निंग कशिश, जो लिखना है वो लिख दीजिए, बस एटलीस्ट मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है सुन रहे हैं एंड एटलीस्ट मेरे साथ हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड रहिए, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14, दैट इज 10:14। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: हाय गाइस, दिस इज जुनिता गांधी। रेडियो यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो जियो बिंदास।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: पूरा का पूरा गैस लाइटिंग वाला गाना है ये कि मीठा मीठा तू है खारा खारा मैं हूँ, ठीक है गलती मेरी है आई नो है ना, ऐसा ही होता है हमेशा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसूर सेंस शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप सामने वाले को ब्लेम करते रहते हो कि भाई गलती जो है वो तुम्हारी है तुम्हारी है, फिर जब नहीं समझते तो आप इस पर आ जाते हो कि ठीक है कोई बात नहीं गलती मेरी है मैं मान गया, लेकिन फिर भी आप जो है ऊपर से मानते हो कि हाँ ठीक है भाई अब और सुनने की मुझ में ताकत नहीं है तो ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन आपको पता होता है कि भाई आप गलत नहीं हो। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप गलत नहीं हो, अगर आपका ऐप जो फ़ोन पे है वो ये बता रहा है कि देखो यार टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होने वाला है तो आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जो है ये हमारा फ़ोन जो है वो बता रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है लेकिन गर्मी जो है मुझे तो उतनी ही लग रही है। 40 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में हो रहा है, मेरा फ़ोन तो देखो यही बता रहा है 42 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, 32 डिग्री सेल्सियस आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, मोस्टली सनी रहने वाला है। कल जो है क्लाउडी कहा जा रहा था, मुझे भी लगा था कि हाँ यार थोड़े से तो क्लाउड्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम देख लेते हैं ना न्यूज़ में या जब हम देख लेते हैं अपने यू नो वेदर वाले ऐप पर कि आज थोड़ा क्लाउडी रहने वाला है तो अपने मन से क्लाउड्स दिखने लग जाते हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि आज बाहर का माहौल कैसा है, फोटो भेजिए मुझे अगर आप रोड पर जो है सिग्नल पे खड़े हुए हैं या बाहर ऐसे ही यू नो चिल कर रहे हैं तो मुझे बताइए 3311063 पर फोटो भेजकर कि कैसा मौसम हो रहा है। ज़्यादा ताकत मैं लगा नहीं पाऊंगी आप लोगों से इल्तिजा करने की, तो प्लीज़ हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो लिख दो यार, मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दो। फिलहाल इस हीट को बीट करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, और आपके झूमने के लिए झूम गाना जो है अली जफर की आवाज में वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी ओपिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

कि मेरी मम्मी के हिसाब से एटलीस्ट 3-4 दिन तो ये वायरल फीवर जो है वो चलता ही है. वेलकम जी 106.3 रेडियो आरएफ पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. वैसे तालियां तो आप लोगों के लिए बजनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मेरी लाइफ जो है वो मस्त बना दी है अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ. तो आइए मैसेजेस की ओर जो है अपनी नजरें दौड़ाते हैं. दानिश शेख जी ने बहुत ही प्यारी सी क्यूटी पिक्चर भेजी है मौसम मुझे दिखाते हुए कि देखिए धूप तो बहुत ज्यादा तेज हो गई है. उसके बाद रवि जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग कशिश जी, गेट वेल सून, टेक केयर, इट्स वायरल, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच. बस यही सुनने की मुझे जो है ज़रूरत भी थी. इकबाल खान साहब ने जो है वो मैसेज किया है एंड उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है मैसेज किया है हैप्पी मंडे मॉर्निंग लिखा है और लिखा है कशिश आराम कीजिए, टेक केयर एंड रेस्ट, अल्लाह आपको कामिल सेहत दे, आमीन, थैंक यू सो मच. बस इसी दुआ की मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो थैंक यू सो मच. सैफुल्ला जी ने भी गुड मॉर्निंग मैम लिखा है, थैंक यू सो मच.

इसी तरीके का है. सो वॉल्यूम बढ़ाइए, ये गाना इंजॉय कीजिए आपकी कसरत के साथ, और आकर जरा आपके स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा यू नो फील बेटर करना है, वो बताऊंगी मैं. फिलहाल रॉकस्टार मूवीज है शहर में गाना आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ा के इंजॉय करो और आपकी कसरत के साथ कहते रहो जी ओपन दास.

जी हुजूर गाने का नाम था और जी हुजूर आपकी ये जो कशिश है ये वापस लौट कर आ गई है आपके लिए स्ट्रेस कम करने का तरीका लेके। लेकिन आज थोड़ी अलग सी बात हम करने वाले हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए ले आई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, हर रोज हम इस सेगमेंट में बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, कुछ ड्रिंक्स बताई हैं, कुछ खाने के आइटम्स बताए हैं, कुछ वेबसाइट्स बताई हैं कि यार इन पर जाकर जो है आप अपने यू नो फोकस को बिल्ड कर सकते हो एंड एंजाइटी को कम कर सकते हो। लेकिन आज मैं जो लेकर आई हूं ना, इससे आपका स्ट्रेस कैसे कम होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सो क्या होता है ना कि हम जब हमारे लव्ड वंस को टाइम नहीं दे पाते हैं तो एक यू नो एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे हम काफी स्ट्रेस्ड होते हैं, नेगेटिविटी काफी हमारे आसपास आ जाती है। एंड या तो फिर हम जो है हमारे ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से या किसी और लाइफ स्ट्रेस की वजह से हमारे लव्ड वंस को आखिर कई बार ना ऐसे दुख पहुंचा देते हैं, उनको जो है नाराज कर देते हैं। अब उनको अगर मना लिया जाए या उनको फील गुड करा दिया जाए तो फिर हमारी लाइफ का स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। मतलब जो हमारे ऐसे लोग हैं जो उनसे बहुत क्लोज हैं, हमारी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पार्टनर हो सकता है, अगर वो जो है खुश है तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो सकते हैं। तो बस उनको खुश करने का एक तरीका जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आप उनको डिजिटल कैसेट बना के दे सकते हो। हाँ जी, मतलब पैसे भी खर्च नहीं करने हैं आपको, बस ऑनलाइन जो है डिजिटल कैसेट बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहां पर आप जाकर डिजिटल प्लेलिस्ट बना सकते हो उनके लिए, जहां पर आप उनके लिए 4, 5, 6 या 10 गाने जो है जो भी आप चाहते हो उन्हें डेडिकेट करना वो आप उस कैसेट में जो है डाल सकते हो, प्लेलिस्ट डाल सकते हो। एंड उस कैसेट पे आप उस कैसेट को नाम दे सकते हो, उस पे जो है नोट लिख सकते हो, हर गाने के साथ एक नोट लिख सकते हो, साथ में कस्टमाइज जो है वो डिज़ाइन भी कर सकते हो। सो एक अच्छा डिजिटल गिफ्ट के तौर पर जो है ये आप किसी को भी दे सकते हो। बाकी अगर एक आध गाना डेडिकेट करना है किसी को तो वो तो देखो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। सो 3311063 पर आइए, जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए कि ये जो डिजिटल कैसेट वाला आइडिया है ये आपको कैसा लगा। बाकी थोड़ी सी देर में जो खबरें हैं वो आपको मिलने वाली कि क्या कुछ जो है वो चल रहा है कदर में या कुछ क्या कुछ है जो स्पेशल होने वाला है। बाकी ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर कॉकटेल 2 मूवी से जब तलक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: Wow.
1: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
2: Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:11 दैट इज 11:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
4: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार 15 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड ट्रस्ट एक्सपर्ट कोचिंग फॉर नीट जेईई एंड सीबीएसई ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑप्शंस आवर 6th ब्रांच इज नाउ ओपन एट अलवक्रा फॉर मोर डिटेल्स कॉल 5005613
5: नमस्कार मैं हूं आर माधवन
6: हाय दिस इज बिपाशा बासु
7: हाय आई एम अश्मन राव
8: हाय मैं हूं प्रियंका चोपड़ा
9: हाय दिस इज दिशा पांडे
5: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: देखिए बारिश ना सही लेकिन बारिश वाले गाने हम जरूर इंजॉय कर सकते हैं, क्यों क्या बोलते हो? वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑल फेयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अक्सर क्या होता है ना कि आपको जब एक छुट्टी की जरूरत होती है तो पूरी कायनात उस छुट्टी को जो है आपको ना दिलाने के पीछे जो है वो पड़ जाती है। काफ़ी सारी ऐसी छुट्टी होती है, हो सकता है कि आपको सिक लीव लेनी हो लेकिन आपके पास इतना सारा काम हो कि आप सिक लीव ना ले पाओ, या फिर आपके घर पे किसी की शादी हो लेकिन वो शादी का आपको जो है एक हफ्ते पहले पता चले और आपको लंबी छुट्टी के लिए एक महीने पहले अप्लाई करना पड़े, या छुट्टी भी मिल गई पर चलो लेकिन फिर आपको अपनी कंट्री जाने के लिए जो है वो फ्लाइट की टिकट ही ना मिले, या टिकट भी मिल जाए तो कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम हमेशा छुट्टी की होती है, मतलब लोग जो है वो अजीबोगरीब जो है तरीकों की रीजंस लेकर आते हैं अपने बॉस से छुट्टी मांगने के लिए। लेकिन इंडिया की एक कंपनी है जिसने 7 दिन की ब्रेकअप लीव जो है वो देने का फैसला किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी ये खबर झूठ है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बस मुझे पता चला है कि इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो 7 दिन की ब्रेकअप लीव दे रही है, यानी अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपका दिल दुख रहा है, आपका दिल टूट गया है, तो आपको एक हफ्ते की ब्रेकअप लीव दी जाएगी उस दुख से उभरने के लिए। वाह जी वाह, मतलब यहाँ पे सर्दी बुखार मतलब मामा जी की शादी, कजिन की शादी, खुद की शादी के लिए भी छुट्टी नहीं मिल रही थी और इन्होंने ब्रेकअप की छुट्टी दे दी। अब देखो यार, ब्रेकअप की छुट्टी तो चलो सेकेंडरी है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आपको लगता है कि यार पेड लीव तो बनती है। तो HR जो है हमारे यहाँ के, या जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे बॉसेस हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, उनको इस चीज के लिए तो छुट्टी देनी चाहिए। जैसे कि आज जो है नींद नहीं खुली लीव, या आज मन नहीं आ रहा, मन नहीं हो रहा है लीव, ऐसी कोई भी जो है छुट्टी हो सकती है। आप बताइए कि ऐसी कौन सा रीजन है जिसके लिए एक पेड लीव होनी ही चाहिए। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाइए, मैसेज कर दीजिए, ऑडियो नोट भी आप भेज सकते हैं कि यार ऐसा कौन सा रीजन है जिसके लिए एक पेड लीव तो देखो होनी चाहिए, और जब हम ये रीजन दें तो सामने से काउंटर ना आए कोई कि नहीं नहीं आ रही है, छुट्टी नहीं मिल सकती। सो 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि ऐसी कौन सा रीजन है जिसके लिए छुट्टी तो देखो बनती ही बनती है। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी एक कूल सॉन्ग ऑफ द आर के उस पार। सो गाने जो है एंजॉय कीजिए एंड वॉल्यूम बढ़ाकर जरा आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपनदास
1: रेडियो ऑलिफ पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशंस आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
1: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
0: And
1: Doha Center, shop more, pay less.
0: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
0: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
2: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

अब तो देखो ये रिचुअल सा बन गया है कि जब भी क्रिश का कोई गाना आएगा तो हम यही बोलेंगे कि क्रिश का गाना सुनेगा। जिसको ये मीम नहीं पता है, इंस्टाग्राम पे क्या देखते रहते हो आप यार सारा दिन, एक मीम नहीं पता आपको? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखो यार, मैंने आपको ये बताया था कि एक इंडिया की ऐसी कंपनी है जिन्होंने 7 डेज ब्रेकअप लीव देने का फैसला लिया है। कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठ है वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे जख्मों को कुरेदने वाली जो ये खबर है इस पर हम आगे बातचीत करने वाले थे। और आपसे बस मैंने ये पूछा था कि ऐसी कौन सी लीव है जो आपको चाहिए, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार इस रीजन के लिए तो एक लीव देखो बनती है, मैनेजमेंट वालों समझ जाओ। सो बहुत ही क्यूट रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास। कामरान जी ने लिखा है मेरी मर्जी लीव। यार देखो मैं इनसे अग्री करती हूँ, एक ऐसी लीव तो होनी चाहिए जिसमें बस मेरी मर्जी है, मेरा मन है, मेरे को नहीं आना है आज। एक दो लीव ऐसी दे दोगे तो क्या दिक्कत है? देखो हमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि मैनेजर को कहीं ना कहीं पता होता है कि हम

लीव मन नहीं है, लीव मैं आलसी हूँ लीव, ये हमारे पास अभी तक आ चुका है। आपके पास अगर कोई अच्छा लीव का आइडिया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन से कारण है जिस वजह से, यार देखो पेड लीव तो देनी चाहिए, हमें मैनेजमेंट को बोल देना चाहिए। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाइए, मैसेज कीजिए आपकी कशिश को। फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर आपको एक गाना जो है वो इंजॉय करना है, सो इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो फिंदास।

तो अपुन के जैसे ही जीना कि जुखाम जो है वो हो जाए लेकिन वचन न जाए आप लोगों को एंटरटेन करने का। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड छुट्टियों की हम बात कर रहे थे, लोग जो है अभी भी जारी हैं ऐसे ही यूं ही, या मेरी बस तबीयत खराब है वाली लीव्स के जो है लिस्ट देने में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अब इनकी और दुखतिन रख पे हाथ रखा तो जो है मुझे रोना ही आ जाएगा। तो इस ठीक है, इस रोने वाले सीन को स्किप करते हैं एंड अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करते हैं। मेरी जान गाना गंगू बाई मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए। एंड उसके बाद ऑली फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर मस्कारा आएगा, सो वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास। बातचीत अभी जारी रखेंगे।

देखो यार, वक्त के साथ एक बात तो मुझे समझ आ चुकी है कि बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं ना, उनमें हमारे जैसी जो है ना चालाकी नहीं होती है। वो गिफ्ट को जो है वैल्यू जो है देते हैं, मतलब उनके लिए जो है उस गिफ्ट की इमोशनल वैल्यू ज़्यादा होती है कि मम्मी ने दिलाया, पापा ने दिलाया, दादाजी लाए थे, दादी जी लाई थी, एंड कितना ज़्यादा एफर्ट और टाइम जो है वो उस गिफ्ट के साथ जो है बिता रहे हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, ये जो समर वेकेशन है ये खत्म हो रही है, बच्चे वापस अपने स्कूल जाने वाले हैं, तो बच्चों की क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान देने का देखो अभी परफेक्ट टाइम है। प्लैनेट स्क्रिबल्स के साथ, प्लैनेट स्क्रिबल जो है वो लाया है कतर का पहला होम ग्रोन ब्रांड, जो बनाता है पर्सनलाइज पेपर प्रोडक्ट्स और गिफ्ट खास आपके बच्चों के लिए। सो इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो इको फ्रेंडली होते हैं, जो कतर विजन 2030 सस्टेनेबिलिटी से इंस्पायर्ड है। तो देखो देर किस बात की है, इस स्कूल ईयर पर जो है ऑर्डर कीजिए पर्सनलाइज्ड बैक टू स्कूल किट्स और स्टेशनरी, एंड जो है इन्हें आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करा सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। सो आज ही इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए प्लैनेट स्क्रिबल गल्फ को, और डिजाइन जो है किट्स अपने बच्चों के लिए जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से, एंड उसके पिक्चर्स यार मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो ये क्रिएटिविटी और DIY वाली चीजें ना मुझे तो काफी पसंद है। मैं हूँ आपकी कशिश, ये अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, एंड अपने बच्चों के साथ जो है प्लैनेट स्क्रिबल एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, जियो बिंदास।

0: किलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: और रिटू का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी और रिटू ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद और रिटू।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: लिटरली बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी लैला मजनू का ये ट्रैक आतिफ असलम की आवाज में आपने एंजॉय किया। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। सपोज हमने जो है कहीं इंटरव्यू दिया है या कहीं एडमिशन का फॉर्म भरा है या जनरली कोई अपडेट हमने देखी है एंड हम सोच रहे हैं कि यार इस पर जो है आगे का फैसला कब आएगा या आगे का कुछ कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा। कुछ टाइम के लिए जो है हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं लेकिन फिर हमारा एक्साइटमेंट जो है वो वैनिश हो जाता है क्योंकि हमें दिखता है कि यार ऐसे कुछ होते हुए ही नहीं दिख रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है एंड फिर एक रैंडम दिन पर जो है वो हमें खबर मिलती है। यस, लेकिन मैं जो है किसी सीरियस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र की बात कर रही हूँ। सो ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी है जो जब मैंने देखी थी तो मैं कॉलेज के आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी एंड कोविड जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है बीच में ओके हुआ था, लॉकडाउन जो है वो ओवर हुआ था एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देखने के लिए पहुंची थी एंड मैंने देखी थी एंड मैं वेट कर रही थी कि यार कब ब्रह्मास्त्र 2 जो है वो आएगी। 2026 में उसका आना जो है वो कहा जा रहा था एंड शाहरुख खान को बड़े स्क्रीन पे देखने का जो मेरा सपना था वो मैंने जो है उस पर पूरा किया था कि यार चलो ठीक है, काफ़ी लंबे समय बाद शाहरुख खान आ रहे हैं। शाहरुख खान की कितनी सारी मूवीज़ उसके बाद आ गई लेकिन अभी तक ब्रह्मास्त्र 2 की कोई खबर नहीं आई, लेकिन अब फाइनली आई है, लॉक हो गया है आलिया भट्ट का कुछ दिनों का एक स्केड्यूल, यानी आलिया भट्ट का पार्ट जो है वो अब शूट होने वाला है, दीपिका का पार्ट उसके बाद शूट होगा, यानी ब्रह्मास्त्र जो है वो जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है। एंड देखो यार, जितना टाइम पहली ब्रह्मास्त्र को बनने में लगा था उसके बाद मुझे लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो है 2 जब तक आएगी तब तक तो कुछ बहुत ही अमेजिंग हो चुका होगा मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी। मैनिफेस्ट करके चलते हैं कि ब्रह्मास्त्र 2 जब तक आएगी तब तक जो है वो हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया कर लेंगे। बस इसी मैनिफेस्टेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाओ आपकी कसूस के साथ, एंजॉय करो, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस।

Once upon a time in Mumbai, दोबारा से जावेद अली की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफर. मैं हूँ आपकी कशिश और शो मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे हैं. लाइफ मस्त है, जो पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए यार, काफी सारे लोग जो है अभी भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार कशिश, हमने अपने बच्चों को जो है बैक टू स्कूल के लिए जो है वो रजिस्टर कर दिया था, अब क्या? अब देखो यार, रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिशियली क्लोज हो चुके हैं. तो अब अगर आपने रजिस्टर किया है तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनल ही समझिए. बाकी जो है इस 27th को अबू सिद्रा मॉल में हम मिलने वाले हैं बैक टू स्कूल में, जहां बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती और मजा जो है वो होने वाला है आपके बच्चों के साथ. वो खेलेंगे, सीखेंगे एंड एक बार किताबें खोलने से पहले खुल के जो है वो जिएंगे. और उसके बाद फिर बैक टू स्कूल तो जाना ही है, फिर वही पढ़ाई चालू और स्कूल के होमवर्क चालू. लेकिन उससे पहले आपके बच्चे डिजर्व करते हैं एक बार जो है फन करना. सो बैक टू स्कूल 27th को अबू सिद्रा मॉल में जो है हमारी मुलाकात होगी 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में. सो मैं तो देखो काफी एक्साइटेड हूँ, अपनी ड्रेस डिसाइड कर रही हूँ क्या पहन के आने वाली हूँ. बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड है वो भी आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके. फिलहाल आपके लिए एक गाना, मतलब खुद को डेडिकेट करते हुए एक गाना जो है मैं आपको सुना रही हूँ. सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास. मुझे इमेजिन करना ठीक है इस गाने पर.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: यस, प्राउडली कहती हूँ मैं उस जनरेशन से हूँ जब अरिजीत सिंह ने गाया था हमारी लव स्टोरियां। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। अब देखिए यार, मेरा करंट ऑब्सेशन ना बन चुका है पुराने गाने सुनना, तो मैं जो है जाती हूँ और आप अपने पुराने गानों का प्यार जो है वो मुझे बता सकते हैं कि यार कितने पसंद आ रहे हैं आजकल आपको पुराने वाले गाने। 3311063 पर जो है मैसेज करके बताइए, और क्या हमें कल के शो में पुराने गानों को थोड़ा सा और मौका देना चाहिए, ये आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ यहाँ से, आपको जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए और मुझ पे अपना प्यार जो है वो बरसाते रहिए। अब वो कैसे करना है, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी आरजेज मिल जाएंगे और 3311063 नंबर तो मेरा आपके पास है ही, बस इस पर आकर जल्दी से मैसेज कर दो। फिलहाल वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो और आपकी कशिश को इजाजत दो। मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये गाना।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जहा, किसे छीने सब दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया.

0: तेरे रंग वरदा।
1: आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां पे हम गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो धीरे धीरे बातें हम शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Waqra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. As

0: आप सभी का एक और बार इस्तकबाल है, आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही प्यारी बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ग्रुप कॉल में था, बात करते करते किसी ने ये बात छेड़ दी कि भाई पढ़ाई का वक्त आसान था यार, अभी बहुत दिक्कतें हैं करके। और मैं भी सोच रहा कि बात तो सही है, वैसे पढ़ाई के टाइम पे वो समय पढ़ाई करनी होती थी, ठीक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करनी होती थी, छोटे मोटे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होता था, बस वही था। अभी ऐसा थोड़ी ना है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। आप देखिए, मेरी तो शादी हुई नहीं है, मगर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है और काफ़ी अलग एक डायमेंशन में जो है उनकी ज़िंदगी बढ़ रही है। तो वो बता रहे थे कि यार वो आसान था यार, पढ़ाई का टाइम बहुत आसान था। अब देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ हमारे लाइफ में हो रही होती है, हमें उसकी कदर थोड़ी ना होती है, जब वो निकल जाती है तब पता चलता है ना। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मेरे पास ना एक मैसेज आया है। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, और हमने रियलाइज किया कि पढ़ाई का टाइम आसान था, अभी लाइफ जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है करके। तो मुझे मैसेज आया किसी का, और उन्होंने लिखा है कि देखिए, लाइफ के हर स्टेज में अपनी दिक्कतें होती हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मगर उन सबसे मुस्कुराते हुए निकलना ही तो जिंदगी होती है।
1: अरे वाह, बिल्कुल सही बात की आपने, शत प्रतिशत मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो तो आए दिन आते रहेंगे, परपेचुअली हम इन सब चीज़ों के आसपास ही रहेंगे, मगर उनसे आगे बढ़ना, निकलना, मुस्कुराते हुए चलना, ये तो चॉइस हमारी है ना। तो यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैं एक चीज ऐसे सोच रहा था कि त्योहार आ रहा है, जैसे ये ओनम जो है आ रहा है और सेलिब्रेशन जो है अपने साइड में चल रहा है। मैं घर में बात कर रहा था तो ये भी बात चल रही थी कि कैसे रिलेटिव सब एक साथ आ रहे हैं। सब तो एक चीज मेरे मन में ऐसे आई कि जो लोग बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, चाहे एक ही देश में रहते हो या फिर दूसरे देश में रहते हो, जो अपने घर से दूर रहते हैं वो त्योहार को बहुत ही अलग तरीके से मनाते हैं और अलग तरीके से मिस करते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर में, अपने फैमिली के साथ ओणम जो है 2015 से नहीं मनाया है। कॉलेज के लिए मैं निकल गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने बोला मैंने तो 40 सालों से अपने घर वालों के साथ ओणम नहीं मनाया। सिमिलरली जिंदगी की भागदौड़ में जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कहीं और निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे छोड़नी पड़ती है। अब देखिए, चॉइस बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर मुझे लगता है कि त्योहार के टाइम पे ही हम सबसे ज्यादा याद करते हैं कि कभी कभी कुछ चीजों को हमें ऐसे ही लेट गो करना पड़ता है और नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरूर हम उन चीजों को मिस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम मिस नहीं करेंगे, जरूर हम उन्हें मिस करेंगे, जरूर हम उनके बारे में हम सोचेंगे, मगर कुछ कुछ मोमेंट्स हमें मिस करने ही पड़ते हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ था, एकदम से मेरे मन में सवाल आया कि दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा होगा और क्यों होगा। और मैंने गूगल दीदी से पूछा, गूगल दीदी ने जवाब दिया। दो जवाब है बेसिकली। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक लैपटॉप है एक्सकैलिबर पीसी जो असूस का है, 14 लाख का आता है ये। इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टैंड आउट फीचर्स में से इसका एक इनोवेटिव सेकेंडरी राइजिंग टच स्क्रीन है, उसके साथ साथ काफ़ी हैवी मल्टीटास्किंग वर्क फ्लोज को प्रोसेस करने लायक हैवी एक प्रोसेसर भी है इसका। अगर हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो इंटेल कोर अल्ट्रा 9 386H प्रोसेसर है, 8 TB NVMe SSD है और 24 GB NVIDIA GeForce RTX 5090 ग्राफिक्स भी है। मतलब लोडेड हैवीली लोडेड लैपटॉप है। तो 14 लाख समझ में आता है, ठीक है, हाँ है, ठीक है, ओके भाई, ओके। और इस एक लिस्ट में अगर हम देखें तो एप्पल भी आता है। एप्पल इसलिए आता है क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल की जो मैकबुक प्रो है वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं, मगर मैकबुक प्रो का जो टॉप एंड अगर हम बोले, जिसमें रैम भी है बहुत ज़्यादा, 32 GB रैम है और 2 TB SSD है, तो वो भी काफ़ी महंगा ही पड़ता है, वो भी 6 लाख के आसपास पड़ता है। मगर एक लैपटॉप है जिसके प्रोसेसिंग पावर के ऊपर उसका प्राइस डिसाइड नहीं हुआ बल्कि उसके डिजाइन के ऊपर हुआ। मैं बात कर रहा हूं एमजे सोरोस की डायमंड स्टडेड नोटबुक के बारे में। ये जो है एक ऐसा लैपटॉप है जिसके पावर के ऊपर इसका पैसा डिसाइड नहीं हुआ है। इसे एमजे करके एक स्टूडियो ने डिजाइन किया है, जो एक आर्ट स्टूडियो है। इसमें हाई एंड कस्टम ज्वेलरी लगा है जिसके कारण इसका प्राइस बढ़ा है, और इसका प्राइस है $3.5 million। मगर ये $3.5 million उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसके स्पेक्स के लिए नहीं है, बट उसके डिजाइन के लिए। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबु सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner अबु सिद्रा मॉल, where convenience meets choice and community meets style. अबु सिद्रा मॉल, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center. Shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. As

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में रखे होने वाला है बैक टू स्कूल बैश, जहां पे बच्चों के साथ स्कूल खुलने से पहले फुल मस्ती करेंगे हम, चिल करेंगे हम, साथ ही साथ गिफ्ट्स बांटेंगे हम। तो एक बहुत ही धमाकेदार शानदार इवनिंग के लिए जो है हम रेडी हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, रजिस्टर किया था, जिसमें से हमने सेलेक्टेड लोगों को कॉल बैक भेजा है, हमने उन्हें इनवाइट भेजा है। तो यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर

भाई रोहित शर्मा की नई स्टोरी ने बवाल मचा दिया है, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो चुके हैं और यही बात बताने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और यहाँ पे भाई बात कर रहे हैं हम रोहित शर्मा की स्टोरी के बारे में, जहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी डाला जैसे वो पवेलियन से निकल के ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा शॉट है जहाँ पे हमें उनका सिलुएट दिख रहा है और जर्सी जो है वो रेड कलर की है, रेड और गोल्डन कलर, जो पहले आरसीबी का कलर होता था। और बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा आरसीबी ज्वाइन तो नहीं करने वाला, उसके बाद रोहित शर्मा और कोहली दोनों ओपन करेंगे, रोको ओपनिंग फॉर आरसीबी, काफी स्पेकुलेशन चल रहे हैं, फैंस काफी एक्साइटेड हैं, बट कोई क्लैरिटी नहीं मिली है इस बारे में। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ यार, वैसे अभी का अगर हम देखें तो रेड और गोल्ड जो है वो पंजाब किंग्स का भी है कलर, तो क्या रोहित शर्मा पंजाब किंग्स में तो नहीं जा रहे। वैसे इस मामले को लेके लोग काफी एक्साइटेड भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 5 हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे और आज हम बात करेंगे हाइलाइटर के बारे में। तो हाइलाइटर जो है काफी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट किया गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर फ्रैंक हॉर्न के बारे में, जो कार्टर्स इंक कंपनी में काम करते थे, ठीक है। तो उनका गोल था एक नॉन परमानेंट वाटर बेस्ड मार्कर बनाना जो बच्चों के लिए सेफ और प्रैक्टिकल था। हुआ ये कि केमिकल्स को टेस्ट करते हुए, एक ट्रांसलूसेंट येलो डाई के साथ टेस्ट करते हुए, उन्होंने इंक को जो है गलती से एक टेस्ट के ऊपर गिरा दिया। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्मजिंग भी नहीं हो रही और इंक जो है वर्ड्स को हाइड भी नहीं कर रहा। जो ब्राइट येलो शेड है वो उस टेक्स्ट को ग्लो और पॉप आउट करने में हेल्प कर रहा था। तो धीरे धीरे धीरे जो है उन्होंने इसको हाइलाइटर के तौर पे बनाना शुरू किया और स्टार्टिंग में नियॉन येलो चूज किया गया था क्योंकि पहले के जो फोटोकॉपिंग मशीन्स थे वो इस लाइट के वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए हाइलाइटेड वर्ड्स जो है वो अगली ब्लैक स्मजेस की तरह नहीं आते थे जब उन्हें कॉपी किया जाता था। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hello to all the listeners.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में होने वाला है बैक टू स्कूल बैश। स्कूल खुलने से पहले, बस्ता जमाने से पहले, एक बहुत ही बढ़िया फन फिल्ड इवनिंग जहां पे बहुत सारे गेम्स होंगे और बच्चों को भर भर के गिफ्ट दिए जाएंगे। मस्ती होगी, धमाल होगा, काफी एक एंटरटेनिंग सा एक इवनिंग। तो इसके लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए थे, जिसमें से सेलेक्टेड लोगों को हमने जो है कॉल बैक भेजा है, इनवाइट भेजा है। और ये बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आज का दिन जो है काफी सैड दिन है। पता है किसके लिए? प्लूटो के लिए, क्योंकि आज के दिन 2006 को प्लूटो ने अपना प्लैनेट स्टेटस जो है खो दिया था। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली रीक्लासिफाई किया प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे, और एक नया डेफिनेशन जो है उन्होंने प्लैनेट के लिए अडॉप्ट किया। और इस डिसीजन ने जो है एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन को रीशेप किया। सोलर सिस्टम को ऑफिशियली उन्होंने जो है 9 प्लैनेट से 8 प्लैनेट के तौर पे जो है रिकॉग्नाइज किया था, रिड्यूस किया था। हमारे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पता है प्लूटो को बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्लूटो कहता है जियो बिंदास।

तो धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे बहुत जल्दी खत्म हो गए, पता नहीं चला, मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे हम। मगर जाने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

बताइए तो बांधिया क्योंकि सिमरन कौर आ गया और ये लड़की भी वही दीवानी है, उतनी पगली है, बिल्कुल नहीं बदली है, दिन ब दिन और ही पगली होती जा रही हूँ मैं तो।

जी कैसा रहा आपका आज का दिन। 3311063 मेरा व्हाट्सएप के नंबर। अगर आपने आज तक नोट नहीं किया तो क्यों नहीं किया यार, सेव कर लो इसको मेरे नाम से। प्यार प्यार से आराम आराम से बता देती हूँ, 3311063 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा। वॉइस नोट करके बताएंगे तो ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत ही लिख पाएंगे। यार कौन इतना मतलब ऐसे टाइम पे जब काम खत्म हो चुका है तो क्यों आपको ये लिखना है, वॉइस नोट भेजो यार। सिमरन कौर आ चुकी है, अब 4 घंटे अब नहीं है बेबी।

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardust evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5:17:40 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ अजनबी नहीं हो अगर आपने बैक टू स्कूल बैच के लिए रजिस्टर करवा लिया था, मतलब अगर आपने रजिस्टर करवा लिया था तो आप लोग इनवाइटेड हैं, तो आप हमारी तरफ से कॉल का वेट मत करिए। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तभी आपका आना कंफर्म हो गया था, तो आना है आपको इस 27th August को अबू सिद्रा मॉल में। दोपहर 3 बजे तक आप आ जाइएगा, 3 से लेकर 7 बजे तक आपके बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, बहुत सारा फन हम करने वाले हैं, मतलब एक बढ़िया वाला टाइम है स्कूल के स्टार्ट होने से पहले, है ना। आज छुट्टियों को फेयरवेल जो है वो दे देंगे, फिर बाकी का काम जो है वो बच्चे खुद ही कर लेंगे, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले हम उनको और खुश करने के लिए और हैप्पी बनाने के लिए बैक टू स्कूल बैच कर रहे हैं। सो अगेन आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको कोई कॉल नहीं आया, तो कॉल नहीं आएगा डार्लिंग, अगर आपने रजिस्टर करवाया था तो आप इन्वाइटेड हो।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
2: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
1: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
2: कतर जनरल इलेक्ट्रिक सिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन करामा।
3: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

भी नहीं रहा, अब इसको सब पहचानते हैं यार। 5:32, 17 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके। सिमरन कौर है आपके साथ। सो एक केनियन बंदा जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो हनी सेलर है। सो उसने क्या किया, उसने अपनी फोटो को खींचा जहां पर उसको मक्खियों ने बुरे तरीके से काटा हुआ और उसका फेस जो है वो पूरा सूजा हुआ है। सो उसके बाद उसने क्या किया कि भाई ये नहीं है कि वो अपना फेस छिपा देगा, तो उसने क्या किया, वो उसका फोटो खींच के उसने एडवर्टाइजमेंट जो है वो बनाया, जहां पर उसने ये बोला है कि देखो अब आपको इससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए कि ये जो हनी है ये एकदम रियल है। देखो ना ये यू नो लाइक व्हाट द बीज डिड टू मी, वो फेस जो था वो उन्होंने दिखाया सूझा हुआ कि ये एकदम ओरिजिनल हनी है यार। ये भी क्या तरीका है यार मार्केटिंग का। 5:32, नहीं सीधे 33 मिनट स्टूडियो घड़ी पहुंच चुके हैं आपके लिए, तो बोलना चाहूंगी

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Oh no! फिर से स्कूल.
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August.

0: पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार ये गाना यार, मतलब सिर्फ तेरा दिल ही तेरा दिल है, मेरे दिल का कुछ नहीं है क्या? 5:51 स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है, सिमरन कौर है आपके साथ। और कुछ लोग जो है वो दिल पे ले जाते हैं, और ये दिल पे लेने वाली बात और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें क्या है कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसमें क्या होता है कि आपको पता है कि शादी से पहले लड़का लड़की का देखना दिखाना चलता है, फैमिली साथ में होती है। तो एक लड़के की फैमिली लड़की को देख के निकली और बाद में वो गाड़ी में बैठे और सडनली लड़के के फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है वो स्प्लिट पे की। सो उसकी फैमिली पूरा रिएक्ट करती है कि अभी तो हम लड़की को देख के आए, लड़की ने से स्प्लिट पे का भेज दिया कि मतलब जो भी खर्चा उधर हुआ था तो आधा लड़का जो है वो पे करेगा। सो उसकी फैमिली करी कि ये तो अभी ऐसे कर रही है, कल को हमारी दुल्हन होगी तो ये कर देगी, वो हो जाएगा। लेकिन लड़का बहुत ज्यादा चिल कर रहा है, वो कह रहा है इट्स ओके मॉम, इट्स ओके, इट हैपेंड। सो यार सब अपनी अपनी जगह सही है यार, वो उसको जानते नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो लड़की ने अभी तक कितने लड़के देखे होंगे जहां पर लड़की वाले ही खर्चा कर रहे हैं। भाई तो सबको हक होता है कि भाई किसी को फालतू का दिखावा करके सारे पैसे लिटाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, लड़की ने सही किया यार। मुझे बताइए जहां पर ये लड़की को देखने गए थे, लड़की ने बाद में स्प्लिट पे वाला मैसेज भेज दिया तो लड़के को भी आधा पे करना पड़ेगा, आपको क्या लगा ये सही है? ये आपकी क्या थॉट्स है? 3311106 पर वॉइस नोट भेजो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
4: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Akshay Kumar.
7: Hi, this is Anushka Sharma.
8: And I'm Ashwin Vasi.
9: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
10: 106.3 Radio Olive. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
11: आरजे सिमरन के साथ.
12: Zabardast evening, make you drive golden with.
13: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
14: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

पीछे पीछे थोड़ी भाग रहे हैं यार, लड़के के 6:15 बचपन से इन स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। सिमरन कौर आपके साथ है। मौसम के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं ताकि उसका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। मौसम अभी के लिए 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 33 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी आज ज्यादा हाई नहीं है लेकिन अभी भी 44% जो है ह्यूमिडिटी है। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। वो दिन भी आएंगे जब मैं बोलूंगी बाहर बड़ी ठंड है, जैकेट पहन लो। ओहो मैनिफेस्टिंग। देख यार बात तो इतनी है,

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे यार, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं बैक टू स्कूल बैच के लिए, जो कि 27 अगस्त को होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में। आपके बच्चों के साथ बहुत सारा फन करने वाले हैं हम, बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं। देखो यार, रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले ओपन थी, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया। अभी भी आप पूछ रहे हैं कि ओपन है क्या, अभी भी कर सकते हैं क्या पार्टिसिपेट। देखो यार, रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो चुकी है अभी। बहुत सारे हमको बहुत बढ़िया वाला रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या है कि बहुत सारे हमको रजिस्ट्रेशन आए हैं, सो आप सबको तो कॉल करना मुमकिन नहीं है। सो जिन जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया था, आप सब लोग जो है वो इस 27 अगस्त को आ सकते हैं दोपहर 3 बजे अबू सिद्रा मॉल में, मजे करेंगे यार। और रानी भी आएगी साथ में।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

भाई साहब गैरी संधू के गाने ना अलग लेवल पे हिट करते हैं यार, अगर आप पंजाबी हैं तो आपको पता रहेगा यार। अमरिंदर के लोग बबूआन हो गए यार, अमेजिंग गाने होंगे यार इन्होंने। मैं कह रही सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। मोहब्बत तो लोगों को ऐसी भी मिलती है। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है, ताइवान का एक एक्टर है जो कि 2025 में इंडिया आया था, एंड होटल में जब भी वो आता है कोई बाहर से तो हम लोग जो है वो स्वागत करते हैं, तो अपने तरीके से वो लड़की जो उसका वेलकम कर रही थी और उसके वो उसी यू नो उसी होटल में काम करती थी, एंड वो वीडियो वायरल हुई ऐसे कि वो एक दूसरे को इस तरह से देख रहा था, वो जो एक्टर था वो ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार हो है ना। सो ये एक्चुअली बहुत सारा प्यार था। देखो कंफर्म अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों की फोटोज एंड वीडियोज जो है वो सामने आ रही है जिसमें ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार में लग रहे हैं। यार देखो प्यार ऐसे भी मिलता है, लड़की जो है ना वो पूरी जिंदिया लग रही है यार, अगर मेरे को बहुत पसंद है वो लड़की है ना। सो वो कुछ फोटोज देखे ना तो जिंदा बिल्कुल उसके जैसी स्माइल, उसके जैसा फेस कट लग रहा है। बट यस, ये जो मोहब्बत है कमाल की है यार, कहीं पे भी मिल जाती है, बैठे बैठे नहीं मिलेगी। हम ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं अपने वाला कब मिलेगा, जब बाहर निकलेंगे तब मिलेगा यार। मेरा तो ऐसे, मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं करती जल्दी जल्दी, मैं बात कर ली तो मैं बोर हो जाती हूँ यार।

0: समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: बिल्कुल, विश्वात्मा फिल्म के बारे में बात करेंगे. बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है इसके पीछे की, मैं आपको बताती हूँ. सो क्या था कि इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर को लिया गया था. उनको अपनी मूंछ जो थी वो शेव करनी थी, लेकिन गुलशन ग्रोवर जो थे अपनी मूंछ को शेव करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनकी लुक जो थी वो कमल हसन जैसी लग रही थी, यू नो, मूंछ के साथ. सो बोला उन्होंने, फिल्म मेकर ने बोला कि भाई तुम अपनी ये मूंछ को हटवा के आओ, शूटिंग के दौरान ये जो है वो नहीं चलेगी. लेकिन गुलशन ग्रोवर ने राजीव को जो था वो मना कर दिया कि भाई मैं अपनी मूंछ को नहीं मुड़वाने वाला हूं. कहते कि जब तुम शूट पे आओगे तो फिर ये काम करके आना. तो 3 दिन तक वो शूट पे आए ही नहीं. और फिर इस के फिल्म मेकर राजीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया. वो एक काम किया तो वो ढूंढते उसके होटल पहुंच गए गुलशन ग्रोवर के, और वहां पर गुलशन ग्रोवर जो थे वो किसी और ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. और उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने डाप दे के मारा गुलशन को एक चाटा. और फिर उन्होंने बोला कि इस तरह का अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और अगर आपने ये चीज दोबारा की तो हम आपको फिल्म से बाहर निकाल देंगे. फिर गुलशन जो थे वो फिर शूटिंग में पहुंचे, उन्होंने अपनी मूंछ जो थी वो मुड़वा दी थी, और फिर उसके बाद फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई. सिमरन कौर यहां के साथ. इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बताती हूँ.
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल है दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: हाय रेडियो ओलिव,
2: रेडियो ओलिव
1: 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
2: आई एम नंबर 1 रेडियो
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर 1 आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: होगी लाला लाला। एक नंबर यार, विश्वात्मा से आप ये गाना सुन रहे हैं। इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जी सोनियों के दादी की हलचल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर याव के साथ। सो डेब्यू किया था इस फिल्म से दिव्या भारती ने और रातों रात स्टार बन गई थी यार। मतलब इस गाने ने उनको इतना ज्यादा फेमस कर दिया था। सो 2014 में यू रिमेंबर किक फिल्म में सलमान खान की, सलमान खान इस गाने पे डांस करता है। सो स्पेसिफिकली साजिद ने इस सारेगामा से 1.5 करोड़ के राइट लिए थे म्यूजिक कंपनी से अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट देने के लिए दिव्या भारती को। सो या इस फिल्म में सलमान खान डांस कर रहे थे, बड़े नाइट क्लब में एक सीन रहता ना, सो या इसके लिए स्पेशली किया गया था। 7:19:02 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये गाना मुझे इतना प्यारा लगता है, जिस मजे से, जिस तरीके से सुनिधि चौहान ने इसको गाया ना, मतलब इंजॉय कर रही है यार वो। आई विश मैं ऐसे गा सकती यार, वो ना ऐसे गाते गाते हंसते हंसते वो गाना जो है वो गा रही है। ध्यान से सुनिएगा गाना और वापस लौट के रियलिटी चेक करते हैं।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ऐसा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: जब आप किसी से मिलते हो, आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अटेंशन दे। फॉर एग्जांपल, उसने बोल दिया कि भाई साहब मेरे को ये मोहितो बहुत ज्यादा पसंद है, तो सामने वाला बोलता है अरे मेरे को भी बहुत पसंद है, मैं तो बहुत पीता हूँ। अगर किसी ने बोल दिया कि यार मेरे को पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल जो है ना उसके बगैर मेरे को पिज्जा नहीं पसंद है, तो आप बोलोगे यार मेरे को भी बहुत ज्यादा पाइनएप्पल पसंद है। पता नहीं वो कैसे लोग हैं जो पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल कहते हैं मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाती। लेकिन अंदर से अगर आप अपने आप से सवाल पूछें कि आपने ये चीजें कभी डिस्कस ही नहीं की थी अपने साथ भी कि आपको ये सारी चीजें पसंद है, पर सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी जो पसंद है आप अपनी पसंद जो है वो बना रहे हो। आप चाहते हो कि मतलब अगर आपको वो इंसान बोलते हुए ये सारी चीजें कूल लग रहा है तो आप भी चाह रहे हो कि आप कूल बने और उसकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो ऐसा हो सकता है कि आप उसके सामने ऐसा लगो कि यार इस इंसान को ये चीज क्यों नहीं पसंद है। सो मैं ऐसे इंसानों से ये चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप घर पे जाते हो तो आप सबसे पहले एक ऐसे इंसान हो जो कि पिज्जा अपनी पसंद से खाते हो, पाइनएप्पल वालों का आप मजाक उड़ाते हो। फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूं, जो पाइनएप्पल के ऊपर पिज्जा खाते हो उनका मजाक उड़ाते हो, लेकिन एक समवन जो एक स्पेशल बंदा है उसको इंप्रेस करने के लिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। सो मुक्ति का ये है, इन शॉर्ट ये है कि जो चीज आपको पसंद है वो आपको पसंद है, किसी की पसंद को अपनी पसंद मत बनाइए। क्योंकि जब आप किसी तरह का होने की कोशिश करते हो ना वो थोड़े दिन ही रहता है, फिर वैसा आप रहते नहीं हो, जैसे हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो प्रिटेंड मत करो यार।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس.
2: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
3: Oh no, fir se school.
4: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
5: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
4: And
5: Doha Center, shop more, pay less.
4: Old Airport Road, Doha and Alcor.
5: Call 70222525.
4: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
6: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
4: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

मैं तेरा हीरो से आप ये गाना सुन रहे हैं और अभी आप अपनी आवाज मतलब आवाज नहीं अपना नाम सुनेंगे रेडियो पर जी। और बिना देर लगाए खेले देखो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मैं अब भी कभी रेडियो पे ले दूं तो आपको अपना बस नाम मुझे बता के व्हाट्सएप करना होगा। मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको बता देती हूँ 3311063। जी हाँ 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए। चलिए मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। श्रीनिवास जी, एम जी, वाजिद जी, संदीप जी, डेजी जी, आसमा जी, राजा जी, जी जी जी, ओके महाराज, ओके महाराज जी, मोहम्मद जी, यूसुफ जी, सरवंत जी, सलीम जी, नाट जी, उसामा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ नाम दोस्तों सलमान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। स्वरणजीत कौर जी, थैंक यू सो मच। अबरार जी, थैंक यू सो मच। अदील जी, थैंक यू सो मच। अयाज बलोच जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नाम लिखना है। अनाया जी, थैंक यू सो मच। अनाया मुकदम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। महबूब जट जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आग्निक जी, थैंक यू सो मच। जुनैद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिखो दोस्तों फिर टाइम खत्म हो रहा है। संजू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिड, थैंक यू सो मच। विक्रम, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अरे यार बाकी के सवाल बाद में कर लेना, अभी मैं नाम ले रही हूँ दोस्तों। नीपू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। विशेष जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एरी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। स्माइली भेज दिया दोस्तों, नाम भेजो ना यार। सिड जी, थैंक यू सो मच। तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना बस शुरू होने वाला है। धर्मेंद्र जी, सुरेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063 ये नंबर है जहां पर आप अपना नाम लिख के भेजेंगे और मैं आपका नाम बोलने वाले। वसीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाजरा जी, थैंक यू सो मच। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बट आप बोल दो थैंक यू और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। अगले घंटे हम खेलेंगे एक चुटकी सॉन्ग। गेट रेडी।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: मैं हूँ सारिका
0: सारिका
1: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो नंबर
2: वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: क्या गाना है यार, आपको आज एक चुटकी में सुनाने वाली हूँ, यानी कि एक चुटकी सॉन्ग में सुनाने वाली हूँ, वो भी गाना कमाल है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: एक चुटकी सॉन्ग, एक चुटकी सॉन्ग,
3: बहुत बढ़िया, बहुत
0: तो ध्यान से सुनिए और बताइए कौन सा गाना है। अगर आपको पता लग गया है गाना कौन सा है, क्विकली आप मुझे वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजिए जिसमें सिमरन कौर जैसी एनर्जी होनी चाहिए। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाना गा के भेजना या बोल के भेजना है वो आप डिसाइड करिए, बट लिख के मत भेजना। अभी रिकॉर्डर ऑन कर लो, एक बार वापस से सुना रही हूँ ताकि अगर आपको गाना नहीं समझ लगा तो 4-5 बार सुन लेना यार। आपको बताइए 3311063।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: सोनू निगम की आवाज में ये ट्रीट दे रही हूँ आपको मैं। इंजॉय, यू आर वेलकम, आई नो राइट।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: स्टूडियो की घड़ी पहुंच गया और आप पागेड रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: और मैंने आपको सुनाया था ये ये एक चुटकी सॉन्ग का जवाब जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ आप लोगों के थ्रू।
3: सलाम वालेकुम सिमरा, मेरा नाम अजलान।
0: हाँ जी।
3: सजदे की ए है लाखों
0: की ए हो गया
3: है सिमरन, मूवी का नाम है खट्टा मीठा, गाना है सजदे की है लाखों।
0: थैंक यू
4: सिमरन, दिस इज स्वप्निल और ये गाना है सजदे की लाखों की मैंने दुआएं मांगी, माना पाया है मैंने सिर्फ तुझे।
0: मुझे लगा मेरे लिरिक्स खराब है, मेरे लिसनर मेरे जैसे ही हैं यार।
5: हाय सिमरन, आपने जो एक चुटकी सॉन्ग सुनाई वो फिल्म खट्टा मीठा से है।
0: ओके।
5: सजदे की लाखों मैंने लाख दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जियो बिंदास, थैंक यू रेडियो लीफ।
0: थैंक यू
6: सिमरन जी। सजदे के ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे।
0: क्या बात है,
6: ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसके बाद अगर आप इसको प्ले करोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।
0: क्या बात है यार, आप सबने एक नंबर जवाब दिए तो कैसे ना प्ले करूं।

0: Hikaye gana yar. मेरे जाने के बाद भी
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास
0: बाकी की बातें कल करेंगे शाम को 5 बजे. ठीक है, अभी के लिए ओवरथिंकिंग मत करिएगा यार, प्लीज. हाँ, खाने में देर वाइश करते रहो, चेहरे बटे वाली स्माइल को किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो.
2: रेडियो ओली.

सोचिए अगर आपको अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट हर छोटी डिटेल याद रहने लगे। आपको याद है 10 साल पहले किस दिन क्या हुआ था, किसने क्या खाया था, आपने क्या पहना था, कौन सा सॉन्ग बज रहा था, पहले ये सब अगर याद रहने लगे, वाव क्या अमेजिंग मेमोरी ऐसा लगेगा। लेकिन थोड़ी देर सोचिए क्या आप हर एम्बैरेसिंग मोमेंट भी याद रखना चाहोगे, हर हार्ट ब्रेक, हर आर्ग्यूमेंट और वो बात जो पहले आपने कभी किसी को माफ कर दिया लेकिन भूल नहीं पाए। एक्चुअली फॉरगेटिंग भी ब्रेन का फीचर है, फेलियर नहीं। हमारी मेमोरी का काम ना हर चीज को परमानेंटली स्टोर करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को रिटेन करना और बाकी नॉइस को फेड होने देना। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। मतलब मैं ये सोच रही थी कि यार मुझे याद नहीं रहता कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, लेकिन अगर याद रहने लग जाए तो कितना परेशान हो जाएंगे हम। कभी कभी भूल जाना हीलिंग का भी पार्ट होता है। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछती हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ की हर एक डिटेल परफेक्टली याद रहने लगे तो क्या आप इस सुपर पावर को सुपर पावर मानेंगे या फिर पनिशमेंट मानेंगे? फॉर मी इट विल बी पनिशमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में कभी याद नहीं रखनी होती और जो याद रखना होता है वो थोड़ा बहुत याद रह ही जाता है। सो आप मुझे बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हेलो,
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: ओ नो, फिर से स्कूल।
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस।
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. एक छोटी सी बुक है द लिटिल प्रिंस. इस किताब के बारे में हमने पहले भी बात की है. उसी के एक चैप्टर की बात करते हैं. बच्चों की स्टोरी लगती है जब इसका नाम सुनते हो तो. एक छोटा प्रिंस, प्लैनेट्स, एक रोज, एक फॉक्स. लेकिन एक्चुअली ये बुक जो है वो एडल्ट को लेकर बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन करती है. स्टोरी में एक आइडिया बार बार सामने आता है. ग्रोन अप चीज़ों को नंबर्स में मेजर करना पसंद करते हैं. कितने पैसे, कितनी एज, कितना बड़ा घर, कितनी सैलरी, कितने फॉलोअर्स. और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि किस चीज़ की वैल्यू और प्राइस सेम नहीं होता. एक ओल्ड फोटोग्राफ की मार्केट वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन उसकी इमोशनल वैल्यू प्राइसलेस हो सकती है. एक फ्रेंड के साथ एक ऑर्डिनरी चाय बिल शायद सिर्फ 5 रियाल होगा, लेकिन याद लाइफ टाइम हो सकता है. सो एक लिटिल प्रिंस को पब्लिशर भी लव, फ्रेंडशिप, लोनलीनेस और मीनिंग जैसे थीम्स पर एक टाइमलेस फेबल के रूप में डिस्क्राइब करता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर कल से आपकी लाइफ को मनी, डेजिग्नेशन और नंबर से मेजर ना किया जाए तो आप अपनी सक्सेस को किस चीज से मेजर करोगे? मतलब मुझे लगता है यार ये तो हैप्पीनेस से मेजर होना चाहिए ना. बाय द वे, यू टेल मी. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: We have Midnight Lounge.
3: सुनो सुनो सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
3: द वेट इज फाइनली ओवर

आज कतर में एक फैसिनेटिंग एग्जीबिशन चल रही है, द एस्ट्रो लेबो टेकर ऑफ द स्टार, ठीक है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में 31st of August तक। लेकिन स्टोरी एग्जीबिशन की नहीं है, स्टोरी है उस दुनिया की जहां गूगल मैप्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ना कोई सैटेलाइट, ना कोई GPS, ना कोई रिकैलकुलेटिंग रूट। सेलर और ट्रैवलर स्टार्स को देखते थे, मैथमेटिशियंस जो थे वो उसे यूज़ करते थे, मतलब मैथ्स को यूज़ करते थे बेसिकली, और एस्ट्रो लेबल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से डायरेक्शन और यू नो बाकी पोजीशन समझते थे। और मुझे सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये लगती है कि हम आज टेक्नोलॉजी से पूरे सराउंडेड हैं, लेकिन सेंचुरीज अगो ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी कम थी, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा था। आज हम स्काई देखकर मोस्टली बोलते हैं वेदर कैसा होगा, तब लोग स्काई देखकर पूछते थे कि हम कहाँ हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई लेकिन इंसान की क्यूरोसिटी लेवल वो वही है। सो अगर आज रात फोन, GPS और इंटरनेट सब बंद हो जाए तो क्या आप बिना गूगल मैप के अपना रास्ता ढूंढ पाओगे? 3311063 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट

Good evening, welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. एक घर में ऐसी एक ड्रॉअर जरूर होती है जिसमें कुछ भी हो सकता है. पुरानी चाबियां, बैटरीज, कोई पुरानी बिल्स, रैंडम वायर्स, एक ब्रोकन चार्जर और पता नहीं क्या क्या. भाई मेरे घर में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर ये सब मिल जाएगा. मन तो करता है उठाकर फेंक दूं, पर फिर लगता है कि इसमें से कुछ ज़रूरत पड़ गई तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है सोचकर वहीं रख देते हैं. हम ह्यूमंस अजीब कलेक्टर्स हैं. कॉइन्स, स्टैम्प्स, फ्रिज मैग्नेट्स, ओल्ड टिकट्स, परफ्यूम बॉटल्स, चाइल्डहुड टॉयज, और कभी कभी एक कम्प्लीटली यूजलेस चीज़ को देख कर बोलते हैं कि इसे फेंकना मत. क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह लेते ही नहीं है, हम उसमें स्टोरी अटैच कर देते हैं. वो टिकट किसी ट्रिप का है, वो कब किसी पर्सन ने दिया था, वो ओल्ड टॉय चाइल्डहुड का है, वैल्यू ऑब्जेक्ट में नहीं एक्चुअली याद में है. तो एक ऑनेस्ट सवाल, आपके घर में वो कौन सी चीज़ है जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है लेकिन आप उसे कभी फेंकना नहीं चाहते. आपको लगता है कि यार ये रहने देते हैं. आई एम श्योर आपके घर में कुछ ऐसा ज़रूर होगा, तो उसकी कहानी बताइए फिर 3311063 पर. मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

एक कलर की स्टोरी, पर्पल। आज पर्पल कलर का यू नो, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मॉल जाएं, पेंट चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है, लिपस्टिक चाहिए तो मिल जाएगी, ड्रेस चाहिए तो मिल जाएंगी, हज़ारों ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर पर्पल डाई इतनी रेयर थी कि वो रॉयल्टी और पावर से एसोसिएट हो गई। इसे बनाने के लिए सी स्नेल्स का यूज होता था। इमेजिन कीजिए, आज जो कलर आप एक शॉपिंग ऐप पर सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हजारों प्रोडक्ट्स देख सकते हो, कभी वही कलर ना स्टेटस सिंबल था। मतलब कपड़े का कलर देखकर ही पता चल सकता था कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी पावरफुल क्लास। और हिस्ट्री का ये पार्ट मुझे फैसिनेटिंग लगता है। फैशन सिर्फ फैशन नहीं होता, कभी कलर, कभी पावर की लैंग्वेज होता है। और अगर आपको एक कलर चूज करना हो जो आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करें, तो आप कौन सा कलर चूज करोगे? भाई मैंने देखा है कुछ लोगों को सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद है क्योंकि उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ पिंक अट्रैक्ट करता है और कुछ लोगों के लिए फेवरेट कलर होता है ब्लू। बाय द वे, व्हिच इज योर कलर? आपको लगता है कि ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा कलर होगा वो और क्यों? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. जब हम म्यूजियम बोलते हैं तो माइंड में क्या आता है? कुछ पुरानी पेंटिंग्स, गोल्ड, रॉयल ज्वेलरी, कुछ एंशियंट चीजें. लेकिन एक इंटरेस्टिंग थॉट है, हिस्ट्री सिर्फ किंग्स ने नहीं बनाई थी. एक ऑर्डिनरी कप, एक हैंड रिटन लेटर, एक बच्चों का टॉय या फिर कोई पुराना टूल, ये भी किसी सिविलाइजेशन की स्टोरी सुना सकते हैं. सो दोहा के म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में मोर देन 1400 ईयर्स और 3 कॉन्टिनेंट्स की इस्लामिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करता है. और इसी आइडिया में एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन छुपा हुआ है कि आज हम अपनी लाइफ में क्या यूज़ कर रहे हैं जो 200 साल बाद किसी म्यूजियम में किसी को ये बताएगा कि 2026 में लोग ऐसे जीते थे. मे बी स्मार्टफोन्स, और मे बी कॉफ़ी कप, और मे बी ओल्ड पासपोर्ट, और या फिर कोई हैंड रिटन डायरी. अगर 200 साल बाद म्यूजियम क्यूरेटर आपके घर से सिर्फ एक चीज़ चूज़ कर सके तो आप वो क्या प्रिजर्व करना चाहोगे और लोगों को बताना चाहोगे कि 2026 में लाइफ ऐसी दिखती थी? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: Yeah, hai Midnight Lounge.
3: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर।

इमेजिन कीजिए एक पेंटिंग हजारों साल पुरानी, दुनिया के सबसे फेमस आर्टवर्क में से एक, मिलियन ऑफ पीपल यूजर्स जो है उसे देख चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग आज भी उसके मीनिंग को लेकर कम्प्लीटली एग्री नहीं करते। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। और इतने सुपरहिट गाने, आपका फेवरेट पर्सन आपके साथ और आप ड्राइव कर रहे हो, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में। आर्टिस्ट ने बात करते हैं मतलब पेंटिंग की, तो आर्टिस्ट ने एग्जैक्टली क्या सोचा था, कैरेक्टर एक्चुअली क्या फील कर रहा है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कुछ आंसर्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन एक फाइनल आंसर नहीं। और शायद इसी में आर्ट की ब्यूटी भी है। साइंस आंसर ढूंढती है और कभी कभी क्वेश्चन को जिंदा रखती है। आप एक पेंटिंग को देखकर जो फील करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही फील करे। मे बी ग्रेट आर्ट वो नहीं होता जो आपको आंसर दे, बेसिकली ग्रेट आर्ट वो है जो आपको घर जाकर भी सोचने पर ना मजबूर कर दे। मतलब ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो मैंने देखी और मैं बस सोचती रह जाती हूँ कि इसका मतलब क्या था, जिसने बनाई होगी वो क्या सोच रहा होगा। सो आज एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे पास कि अगर आप किसी फेमस पेंटिंग के आर्टिस्ट से सिर्फ एक सवाल पूछ सकते तो आप क्या पूछते। मेरे मन में ऐसे बहुत सवाल आते हैं, आप मुझे बताइए अगर आपको कोई एक मौका मिलता किसी आर्टिस्ट से एक सवाल पूछने का, किसी पेंटर से एक सवाल पूछने का, तो आप क्या पूछते। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज 3311106 3। स्टे ट्यून्ड टू योर बिंदास।

So, चलिए फ्यूचर में चलते हैं. ईयर इज 2050. एक टीनेजर हिस्ट्री क्लास में बैठा है. टीचर बोलती है वंस अपॉन अ टाइम पीपल हैड रिमेम्बर पासवर्ड. और बच्चे बोलते हैं व्हाट, दे यूज्ड फिजिकल कीज, दे यूज्ड टू वेट फॉर फूड डिलीवरी, दे हैड टू चार्ज फोन. मतलब सोचिए 2026 में ये सब होता था. एंड पीपल यूज्ड टू से सॉरी नेटवर्क नहीं है. क्लास में सब हंस रहे हैं क्योंकि एवरी जनरेशन थिंक्स हमारी टेक्नोलॉजी तो अल्टीमेट है. 2050 में भी यही सोचेंगे बच्चे. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते दिमाग में ये सवाल आया कि अभी 25 साल बाद की अगर मैं बात करूं, 24-25 साल बाद, तो लोग यही सब बातें करेंगे अनटिल द नेक्स्ट जनरेशन कम्स अलोंग. आज जो नॉर्मल है मे बी 25 साल के बाद कंप्लीटली रिडिकुलस लगेगा. और मुझे लगता है कि फ्यूचर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या इन्वेंट करेगी, क्वेश्चन ये है कि हमारी आज की कौन सी आदत है जिसमें फ्यूचर जनरेशन को सबसे फनी लगेगी. फोन चार्ज करना या पासवर्ड याद रखना या फिर ट्रैफिक या फिर प्लीज वेट, आई विल गूगल इट. सो टेल मी, आप मुझे बताइए कतर कि 2050 के लोग हम पर किस बात को लेकर सबसे ज्यादा हंसने वाले. सो नंबर इज सेम 3311063. मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज, जहाँ कभी हम स्टार्स की तरफ देखते हैं, कभी हिस्ट्री की तरफ, कभी फ्यूचर की तरफ, पर देखते जरूर हैं कुछ ना कुछ. सो आई विल से फॉर नाउ आई हैव टू से गुड नाइट. मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह पर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: चांदनी रातें चांदनी रातें।
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: अरे तुमका का बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।